0: राजवंशी मेडिकल हल घुरी गाउँमा तपाईहरूकै चिर परिचित अनुभवी स्वास्थ्य कर्मी इन्द्रबहादुर राजवंशी 24 घण्टा बस्नुहुने भएकाले समयमै सेवा लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। उपलब्ध सेवाहरू गर्भवती, सुत्केरी, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, दीर्घ तथा तत्काल भएका सम्पूर्ण रोगहरूको उपचार तथा परामर्श, हात गोडा जीव दुख्ने लगायत सम्पूर्ण रोगहरूको फिजियोथेरापी, मालिस गर्ने, सेक्ने, आधुनिक मेसिनबाट सेवा दिइने, दिशा पिसाब रोकिएमा निष्कासन गराउने, सम्पूर्ण रोगहरूको निशुल्क परीक्षण र परामर्श, रगत दिशा पिसाबको परीक्षण समेत गराइने, बच्चा लगायत सबै उमेरकालाई क्यानुला लगाइने, कहाँ जाने, कुन डाक्टरलाई देखाउने बारे विशेषज्ञ सेवा लगायत परामर्श तथा सल्लाह दिइने, डाक्टरले लेखेका औषधिहरू मगाइदिने व्यवस्था भएको, आपतकालीन अवस्थामा घरमा नै गएर स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं परामर्श सेवा दिइने। राजवंशी मेडिकल हल, ठाकुर बाबा नगरपालिका 1 घुरी गाउँ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98580-25002 र 98-20-43-41-61।
1: अशोक साल त ढुक्क नारे बत्ती
2: हाँ त पोर्सालिक बात सम्झोट आम हिन्दो लक्ती रहर बरा पानी बस्त बेर अस्तिक चिम्चाम कहाँ रह सिक जाए त सोचो त लट्ठी ठिपकम घर डान डान पानी बर्ष टिकी मन छत पटाए लाग
1: हाँ त धन्न ब्यालम र ढिक ठिकम से सुरक्षित ठाउँ सरली नारे बत्ती
2: हाँ हो बदा
3: बर्खक ब्यालमा बहिने ढ्यार जोखिम रहत उहमार बहिया से बचकला पहिला सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रहिए एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक छोटे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
4: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
5: जीतपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हुई
2: हाँ तब पतलिए याद करो तो जू डराए लागत है पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा
5: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गया
6: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है यही नाते बाढ़ से बचे खर्ती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेविका सबके संपर्क करे सूची तैयार पारा जाए एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए सर सफाई में ध्यान दिया जाए
4: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश
7: यो साल तो ढुक्क भयो है बुढी
8: होनी अघिल्लो साल सम्झिदा तो कहाँले लाग्छ पानी पर्दा यसको आनन्दले कहाँ बस्न सकिन्थ्यो र सोच्नुस् त नदी किनारको घर सानै पानी पर्न थाल्यो कि मन अथालिने
7: हो त धन्न समयमै नदी किनारबाट सुरक्षित ठाउँमा सरियो
9: वर्षाको मौसममा बाढीको जोखिम बढी हुन्छ त्यसैले बाढीबाट बस्न पूर्व तयारी र सावधानी अपनाउनुहोस् नदी नालामा पानीको मात्रा बढेको छ भने सावधान हुनुहोस् एम्बुलेन्स सुरक्षा निकाय स्वयंसेविका आदिको सम्पर्क विवरणको सूची तयार पार्नुहोस् आकस्मिक प्रयोगका लागि झटपट झोला तयार गर्नुहोस् साथै वर्षाको समयमा संक्रमणको जोखिम धेरै हुने भएकाले पानी उमालेर पिउने गर्नुहोस् स्वच्छतामा ध्यान दिनुहोस्
4: प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बाँकेको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको विपद पूर्व तयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजनाद्वारा जनहितका लागि जारी सन्देश
10: गर्जन सधै बाघ झैं रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तुम्हें बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसी पुतली से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या